आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

छो हम पर शक ना लाओ, अब जो

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 9 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डस ले तो क्या कहना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 2 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 5 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बचाते रहो दिल से।

हेलो दोस्तों, मैं आ गया लेकर मिक्स मस्ती का ये मस्ती भरा शो। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, साथ ही साथ सुन रहे हैं रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहिए दिल से। लेकिन सबसे पहले मेरे पसंद के गाने इंजॉय कीजिए, आते ही इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। दोस्तों बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले आज जुड़ने वाले मुबारक हुसैन जी हैं, बहुत बहुत भाई मुबारक हो आपको, आप जुड़ गए हैं। एंड साथ ही साथ जुड़ चुके हैं नाहिद अंसारी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और सरफराज जी हमें साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं मेरे दोस्त, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बीके पंत जी हैं, वेलकम है आपका जी बीके पंत जी। साथ ही साथ हमारे क्या नाम है इनका, ये हैं अशोक देशमुख जी, बहुत बहुत वेलकम है सर जी आपका, अशोक देशमुख जी। सुनीता गोप जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी सुनीता गोप जी। और राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सर्वेश भगत जी। और जुड़ने वाले में हैं नाहिद, अच्छा इनका तो नाम मैंने ले ही लिया है दोबारा। और ये रामकेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रामकेश जी। गजानन सरकार जी का पूरा ग्रुप जुड़ गया है, बहुत बहुत वेलकम है पूरे ग्रुप का। और एमडी फैज आलम जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है एमडी फैज आलम जी। जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और एमडी सोहेल जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और सर्वजीत शेट्टी जी आपका भी वेलकम है। और जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, सभी सभी सभी सभी दोस्तों का वेलकम वेलकम वेलकम करते हैं। और उसके बाद अब आज को जो भी गाना है ना, ओ माय गॉड, सभी गाने एक से बढ़कर एक, भोजपुरी भी है और हिंदी भी है। और मैं सोच रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिलहाल जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ भोजपुरी से स्टार्ट करता हूँ, जाकिर खान जी की पसंद है। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनेले बड़े, सच में बड़ा फुर्सत से बनेले बड़े लगातार आतवार के दिन है ना।

0: बहुते फुर्सत से पहले एकदम रच रच के बने पड़े है कि नहीं। वैसे बहुत से दोस्तों का मैसेज आ चुका है मेरे पास, बहुत से दोस्त जुड़ते भी जा रहे हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। जैसे कि यहाँ कुंता बेनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है कुंता बेनी जी। और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अभिषेक तिवारी जी आपका भी। साथ ही साथ ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी।
0: जी धन्यवाद वाला, लेकिन मैं तो अब एक मैसेज शामिल हो गया ना आपका। अब देखते हैं कि कौन कौन से दोस्तों का मैसेज आ रहे हैं। लेकिन आगे रामकेश जी भी हैं और बिट्टू कुमार जी हैं, मीना जी जुड़ चुके हैं यहाँ यूएस से, और सर्वजीत सैनी जी हैं, गोविंदा खंडाते जी हैं, ये जुड़ चुके हैं, और राहुल पासी जी और संध्या पटेल जी और किशन पाल जी, अरुण मंडल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका। अशोक पाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। और ये मुबारक हुसैन जी सभी गाने की तारीफ कर रहे हैं, और सभी आपके लिए फीडबैक दे रहे हैं। जाकिर खान जी आप खुश हो जाइए। और नंदिनी माँ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम है। और तो अगला गाना इस तरह, मतलब क्या बोले, सभी गाने एक से बढ़कर एक है। तो अगला जो गाना मुझे दिख रहा है जो इतना इतना खूबसूरत है, मतलब इतनी प्यारी है कि मैं तो उनको देख कर मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा, है ना। कुर्ता फाड़ के मुझे चिल्लाना पड़ेगा ना। और ये फरमाइश लेकर है राकेश शर्मा जी। तो राकेश शर्मा जी आपकी पसंद को मैं प्ले कर रहा हूँ, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा, बिल्कुल कुर्ता फाड़ के एकदम।

0: माय गॉड, इतना सारा
1: अपने दिन भी आएंगे अच्छे से सपारा फिर होंगे बच्चे
2: तेरे बच्चों को खिलाऊंगी
0: मैं कुर्ता फाड़ के। वैसे आज जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, नूर आलम जी जुड़ चुके हैं और सोहेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत सभी का वेलकम है। और अगला गाना मैं प्ले करूंगा, वैसे आप लोग मैसेज करते रहिए नो प्रॉब्लम, और कोशिश करेंगे जो आज के विनर होंगे उनके एक पसंद के और गाना मैं जरूर प्ले करूंगा। लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ राहुल पासी जी का, सुनिए क्या कहते हैं।
3: जवानी बड़ी मस्त मस्त है, ये भी मौसम काली घटा दीवानी, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। अमन सर जी मुझे ये सॉन्ग सुनना है अंबाला से राहुल पासी, ये सॉन्ग आपके लिए और सभी दोस्तों के लिए और वंशिका जी के लिए।
0: एंजॉय कीजिए भाई।

0: जवानी
1: अए है है है
0: तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है
2: तेरी जवानी बड़ी मस्त
1: बिल्कुल मस्त मस्त है यार जवानी बड़ी मस्त मस्त है वैसे फीडबैक भी बहुत मस्त मस्त है और गाने भी मस्त मस्त है और दोस्तों के फीडबैक भी आ रहे हैं बहुत सारे और यहाँ पे गजानंद जी रामकेश जी और राधा कृष्ण गोप जी नूर आलम जी कुंदा बेनी जैसे ये क्या कहते हैं इनकी तो कम से कम सुनना पड़ेगा ना मुझे।
3: अमन सर जी आपने मेरा सॉन्ग चलाया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके जी आपने धन्यवाद कह दिया बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया है और जैसे कि मैं बता दूं कि राजेश कुमार जी और एमडी सुहेल जी जितेंद्र सिंह जी संध्या पटेल जी और कुंता बेनी जी साथ ही साथ नूर आलम जी हैं और क्या नाम है इनका राधा कृष्ण गोप जी हैं और रामकेश जी हैं और रामकेश जी के पास गजानंद सलोकार जी का पूरा ग्रुप गाने की तारीफ करते हुए फीडबैक दे रहा है और सभी सभी दोस्तों के ओके जी तो चलिए इसी बात पर अगला गाना मैं सुनवाने वाला हूँ और ये कौन सा गाना होगा वो तो ये तो गजानंद जी के ग्रुप का गाना है हमारे संजू भाव जी फूल भक्त संजू भाव जी क्या कहते हैं पहले इन्हीं की सुनते हैं।
4: रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार। अमन सर जी कैसन बानी
1: बहुत बढ़िया बानी रौला पत्नी कैसन बानी।
4: ओके अमन सर जी हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी मैं फुले भक्त संजू भाऊ बोधवड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज है बुधवार और आज की अपनी थीम है स्टार।
1: हाँ बोलिए।
4: आवाज दिए है बप्पी लहरी जी और श्रेया घोषाल जी इन्होंने और अमन सर जी गीत के बोल सर इस प्रकार है। हुलाला हुलाला हुलाला हुलाला।
1: ओके जी गाना सुनवाते हैं आप सबकी पसंद का गजानंद जी का ग्रुप का गाना और उलाला उलाला एंजॉय कीजिए इस गाने को ये बहुत ही प्यारा मजा आने वाला है।

ओ लला वाह क्या गाना है, अच्छा लगा ना आपको। वैसे फीडबैक बहुत सारे मेरे पास आए हुए हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ किनके दोस्तों का फीडबैक आया हुआ है। ये सुनील कुमार जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, राहुल पासी जी हैं, रामकेश जी हैं, बीके पंत जी हैं, हुकुम चंद जी जुड़ चुके हैं वेलकम है, गजानंद जी हैं, बाबूलाल अंजाना जी हैं, परवेश कुमार जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, कुंता बेनी जी हैं, नूर आलम जी हैं, फैज आलम जी हैं, सुहेल जी हैं, नाहिद अंसारी जी हैं, जाकिर खान जी हैं और संजय पटेल जी हैं। तो सभी का वेलकम करते हुए अगला गाना बिना मैं देर के प्ले करने चाहूंगा, हुकुम चंद जांगिड़ जी का, क्योंकि गोरा रंग देख के दीवाना हो गया हूं ना इसलिए। हुकुम चंद जांगिड़ जी, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

आना पड़ेगा ना। वो तो मैं हो गया हूँ यार। अरे दिल नहीं मानता, क्या करे यार।

राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि तुम्हारी तस्वीर जब भी देखता हूँ दिल खुद ब खुद मुस्कुरा देता है। आए हाय क्या बात है जी, लिखते हैं कि तुम्हारी तस्वीर जब भी देखता हूँ दिल खुद ब खुद मुस्कुरा देता है और तुम्हारी एक झलक ही काफी है, दिन मेरा सवर जाता है। आहा हा क्या बात है, बिल्कुल सही, ये तो मेरे लिए बना हुआ है ना।

0: ओके जी, तो मुंडा गोरा रंग के देख के दीवाना हो गया है, तो वो तो दीवाना होना ही पड़ेगा। वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, जैसे कि जुड़ चुके हैं काजल झक्का जी, वेलकम है काजल झक्का जी आपका भी, और एमडी सोहेल जी, नूर आलम जी, बाबूलाल अंजाना जी, सभी ने गाने की तारीफ की है, इन्हें गाना बहुत ही पसंद आया है। ओके जी, तो इसी बात पे मुझे गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है, राजा जी की मुस्की, राजा साहब जी के लिए गाना आया हुआ है, बहुत ही प्यारा गाना है, जिसे भेजी है कायनात जी। तो कायनात जी क्या कहती है, इन्हीं की जुबान से सुनते हैं, उनकी प्यारी सी वो खूबसूरत, और वो मतलब क्या बोले, ये तो सुरों की मलिका हो गई है, क्योंकि इनका आवाज जो है ना, ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा बोलती हैं और गाती हैं एकदम कमाल की। तो सुनते हैं क्या कहती हैं।
1: पिया मोर करारी जैसे पानी के सुपारी हो रामा, कर रंगदारी उनकर नैन बारी बारी हो रामा।
2: यही गाना सुनना है आज राजा साहब के लिए।
0: है, तो सुनवा दिया राजा जी के लिए ये गाना, बहुत ही प्यारा है।

0: अरे बेजोड़ बड़न तो बेजोड़ ना लगी का। वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत बहुत दोस्तों का वेलकम करते हुए। और यहाँ पे मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मनीषा शर्मा जी आपका भी। और गजानन जी लिखते हैं, और रामकेश जी, नाजिम जी, और कुंता बेनी जी, बाबूलाल अंजाना जी, नूर आलम जी, सहेल जी, सभी गाने की लाजवाब तारीफ कर रहे हैं कि इनको गाना बहुत ही पसंद आया है और बेहद ही अच्छा लगा है। लेकिन ये क्या कहते हैं, जरा इनकी सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर, गुड इवनिंग।
0: जी जी, वेलकम।
1: आपके तरफ मौसम कैसा है?
0: हमारे मौसम इधर बहुत ही अच्छा है, और एकदम आज हल्की हल्की बारिश हुई है, बस ज्यादा नहीं हुई है लेकिन हल्की बारिश जरूर हुई है। वैसे अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, ये सुनील कुमार जी बांका बिहार से, जुम्मा चुम्मा दे दे। इंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

0: चुम्मा चुम्मा दे दे। वैसे बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं मेरे पास, बहुत से दोस्तों ने गाने को पसंद किया है, और जितने दोस्तों ने गाने को पसंद किया मैं उनका नाम बता देता हूँ। और जुड़ चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़े जी, बहुत बहुत वेलकम है। तो गाने को पसंद कर मेरे दोस्तों का नाम है वह है बिट्टू कुमार जी, और कुंता बेनी जी दिल्ली से, रामेश रामकेश जी हैं, गजानन सलोकार जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, राहुल पासी जी हैं, एमडी नूर आलम जी हैं, एंड सुनील कुमार जी हैं, नाहिद अंसारी जी हैं, कपूर चंद जी हैं, बाबूलाल अंजाना जी हैं, राधा कृष्णा गोप जी हैं। लिखते हैं अमन सर जी धमाल हो गया, ये तो मजा ही आ रहा है जी। अगला गाना सुनवाते हैं, ये यानी तीन दोस्तों की पसंद है, हमारे अशोक देशमुख जी हैं एंड सर्वेश भगत जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, सुनवाते हैं।
1: आरजे अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते,
0: नमस्ते
1: जी।,
0: जी
1: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है बाल ब्रह्मचारी, और गाने का बोल है तू है लड़की मैं हूँ लड़का।
0: अच्छा,
1: और हॉट स्टार जो सबको दीवाना बनाते सभी बड़े को प्रणाम से छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत दहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं, हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, परेश भगत, आनंद शेखर, कुमार चंद कुमार, सुरेश कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, अनिल मेहता जी, नंदलाल यादव जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता किमरत जी, आरजे रत्ना जी, आरजे वंशिका जी, आरजे एम एस परमार जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिस्टनर इसमें संसद को सुना जी। मेरा मिलके बस
0: ओके जी, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

0: और तो ये गाने आपने एंजॉय किया होगा, बिल्कुल बहुत ही प्यारा था ना, मैंने पहली बार सुना, मुझे अच्छा लगा है। और वैसे फीडबैक भी बहुत से दोस्तों के आ रहे हैं, बहुत से दोस्तों ने गाने को यहाँ पे पसंद किया है। और ओह माय गॉड, कितने दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इनका शामिल करूंगा क्योंकि इनका गाना प्ले हुआ है ना।
1: अर्जय अमन सर जी धन्यवाद, हम तीनों भाई का फरमाइश आप चला दिए, धन्यवाद।
0: बिल्कुल भाई चलाना ही पड़ेगा। और ये क्या कहते हैं, वैसे वैसे वैसे बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, हमारे आत्माराम पाटिल जी, राहुल पासी जी हैं और सर्वजीत सेठी जी हैं, और साथ ही साथ क्या नाम है इनका, गजानन सुलकार जी हैं, बीके पंत जी हैं, ओके बीके पंत जी हैं, और अकुंता बेनी जी हैं, और मनीषा शर्मा जी हैं, ओके ये सभी, और ये सभी गाने की तारीफ करते हुए आपको फीडबैक दे रहे हैं क्योंकि इन सभी को आपका गाना बहुत ही पसंद आया। और नितिन सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है नितिन सक्सेना जी। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि ये नशीली आंखों से जब वो हमें देखते हैं कि नशीली आंखों से जब हमें वो देखते हैं, हम घबरा के आंखें झुका लेते हैं, और कौन मिलाए आंखों से आंखें उनकी, और सुना है वो आंखों से अपना बना लेते हैं। हाय क्या बात है भाई, ओके जी फिलहाल अगला गाना मैं सुनवा रहा हूँ, और ये जो पसंद आई हुई है किनका है जैसा देखना पड़ेगा।
2: जिस दिन से मिले ना जाने क्यों लोग जले,
0: ये पसंद है नाहिद अंसारी जी का। नाहिद जी सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट करना चाहती है, तो नाहिद जी आपका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए अपने इस प्यारे से गाने को।

0: मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ।
1: दिल खो गया, हाय हाय हाय हाय हाय हाय, दिल खो गया। और वैसे बहुत सारा फीडबैक भी आ गया है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आरिफ सिंधी जी, और बिट्टू कुमार जी, और साथ ही साथ राहुल पासी जी हैं, और नंदलाल जी कुछ कह रहे हैं, जरा इनका तो सुनना पड़ेगा क्या कहते हैं।
2: प्यार प्यार करते करते अच्छा। तुम पे मरते मरते दिल दे दिया, दिल दे दिया, हा हा हा। बहुत लाजवाब गाना लगा, पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। ओके जी, तो आपका ये फीडबैक था, कोई बात नहीं, कभी कभी एक, एक एक दो फीडबैक में शामिल करते रहूंगा, नो टेंशन। और यहाँ पे नाजिम जी हैं, गजानन जी हैं, एमडी सोहेल जी हैं, कुंता बेनी जी हैं, और बाबूलाल अंजानन जी हैं, बीके पंत जी हैं, और कृष्णा यानी किशन पाल जी हैं, मनीषा शर्मा जी हैं, और नाहिद जी क्या कहते हैं, लिखते हैं कि संगीत की हर धुन में तेरा ही ख्याल है, संगीत की हर धुन में तेरा ही ख्याल है, और इस हसीन शाम में दिल को अजब हार है, और तुम बन जाए ख्वाब तो तू पलके ना खोले, मैं पलके ना खोलूं कभी, और तुझे देखते रहना है अब हमारी जिंदगी का सवाल है। थैंक यू सो मच। ओके जी, इसी बात पर अगला का जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो कौन सा, वो किसने डिमांड किया हुआ है, और ये मैं देख रहा हूँ, इसे ये सुनना चाहते हैं नंदलाल यादव जी। नंदलाल यादव जी क्या कहना चाहते हैं, जरा इनका ऑडियो भी सुन लेता हूँ मैं। नंदलाल जी कहाँ है जी, आइए जी। लगता है इन्होंने नाम हिंदी में टाइप कर दिया है, मुझे लग रहा है ना, ना इंग्लिश में है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मिल गया। हाँ, इन्होंने लिखा है यानी कि भोजपुरी गाना सुनना चाहते हैं, वो काला चश्मा वाला। तो भाई काला चश्मा वाला बहुत सारे गाने हैं, आप शायद इसकी बात कर रहे हैं,

और इसी बात पर मेरे पास बता दो कि बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, जैसे कि हम यानी कपूर चंद जी और नितिन सक्सेना जी, दत्ता कदम जी हैं, और उनके बाद है राधा कृष्ण गोप जी, प्रमोद कुमार जी, राहुल पासी जी, एमडी सोहेल जी, अमीना खान जी, बिट्टू कुमार जी, सभी दोस्तों ने गाने की तारीफ करते हुए गाने को पसंद किया। इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो कविता जी का गाना है, एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे। आए है क्या गाना, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया हुआ है, गाने को पसंद किया है और अपना अपना फीडबैक दिया है। उनमें से नाम है बिट्टू कुमार जी, नाहिद अंसारी जी, कुंता बेनर्जी, सुहेल जी, नितिन सक्सेना जी, प्रमोद कुमार जी, राधाकृष्ण गोप जी, दत्ता करण जी और जाकिर खान जी। सभी दोस्तों का थैंक यू सो मच। और अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ, रामू तिवारी जी का, मेरी छतरी के नीचे आ जा रहे भाई, क्यों भींग रही हो, इधर आ, इधर
1: आईला।

और ये गाना बहुत लंबा है इसलिए मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। और बहुत सारे दोस्तों ने गाने को पसंद किया है, उनमें से नाम है दत्तक रम जी का, रामकेश जी का, कुंता बेनर्जी का एंड बी के पंत जी का, एम डी सुहेल जी का एंड अनिल मेहता जी हैं, राहुल पासी जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं एंड जाकिर खान जी हैं, बिट्टू कुमार जी हैं, गजानन सुलोकार जी हैं और बाबूलाल अंजना जी। इन सभी दोस्तों ने गाने को पसंद करके अपना अपना फीडबैक दिया है। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का।

0: केरे सलमा खड़ी खड़ी।
1: बिल्कुल, और लेकिन मेरे पास जो अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो गाना भी बहुत ही प्यारा होने वाला है।
0: आईला,
1: जिसे लेकर आए हुए हैं हमारे एमडी नाजिम जी। ऊंची है बिल्डिंग और लिफ्ट रहा बंद है, तो एंजॉय कीजिए इस प्यारे से ट्रैक को। और नाजिम जी ने गाने सभी दोस्तों को डेडिकेट किया है।

और अमीना खान लिखते हैं कि ये बारिश ये ठंडी हवा, ये बारिश ये ठंडी हवा, ये रिमझिम और खुशगवार मौसम, और हम अगर दूर ना होते तो मिलकर चाय पीते। वाह क्या बात है, मुझे भी चाय पीने का मन करने लगा। अभी एक कप मेरे लिए भी भेज दीजिए अमीना जी।

और बता दूं कि बहुत से दोस्तों का मेरे पास मैसेज आया हुआ है, गाने को पसंद किया इन्होंने और अपना अपना फीडबैक दिया है, जिसमें से नाम है कुंता बेनी जी और प्रमोद कुमार जी, रविंदर गोरखपुरी जी एंड गजानंद सलोकार जी, राहुल पासी जी, नाहिद अंसारी जी, बीके पंत जी, जितेंद्र सिंह जी और नितिन सक्सेना जी, तो सभी का वेलकम करते हैं और अगला गाना सुनवाते हैं, अगले दोस्त की पसंद। ओके, तो अगला जो गाना है वो जब हम नहीं पहुंच पाए हैं तो ये खुद आ गए हैं, मतलब सात समुद्र पार पीछे पीछे, और ये गाना लेकर आए हुए हैं कौन से दोस्त, जितेंद्र सिंह जी। तो जितेंद्र सिंह जी, आपकी पसंद का गाना मैंने प्ले कर दिया, इंजॉय कीजिए।

वेलकम वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत बहुत बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आ चुके हैं, एज लाइक फीडबैक समझ लीजिए। और जिसमें से नाम है हमारे जितेंद्र सिंह जी, नंदनी माझी, कुंता बेनी जी, बीके पंत जी, और बता दूं कि ये कपूर चंद जी, एमडी नाजिम जी, गजानन सरकार जी, राहुल पासी जी और राधा कृष्ण गोप जी, ये सभी दोस्तों का। और अमीना खान जी लिखती है कि बचपन से मेरा ख्वाब था कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसे पाकर मैं सब कुछ भूल जाऊं, और फिर मुझे मोबाइल मिल गया। अच्छा, यानी कि सब कुछ आपने पा लिया, और सब क्या बात है। सच में आपका ये जो बात है ना, सच में सीधे दिल पर लगी भाई, क्योंकि आजकल सबका साथी मोबाइल बना हुआ है, क्योंकि मोबाइल के बिना किसी को एक पल चैन नहीं है। कोई रील देखने में व्यस्त है, कोई कुछ कोई किसी काम में, मतलब हर किसी को मोबाइल ने अपना दीवाना बना दिया है। और अगर इन बच्चों को भी, मतलब उनसे कोई काम निकलवाना हो, उनको भी मोबाइल दे दो, जो उनके लिए अभी घातक सिद्ध हो रहा है। इसलिए मोबाइल से मैं तो कहूँगा कि कुछ दूरी बनाकर रखना भी ज्यादा बेहतर है, लेकिन क्या करे, दिल है कि मानता नहीं है ना। मोबाइल से दूरी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ओहो, थोड़ा सा मोबाइल बैटरी चार्ज नहीं रहता है तो टेंशन होने लगता है, ओह माय गॉड, मेरा नंबर ऑफ होने वाला है दिस डेट, है कि नहीं। वैसे फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं अगली पसंद का गाना। और ये गाना मतलब जब सात समुंदर यानी पीछे पीछे जब आ गई, तो अब ये गाना मुझे याद आ रहा है सुभाष तिवारी जी का, जिन्होंने भेजा है कि साची कहे तोहरे आवन सांगने, अंगना में आयल बहार भौजी। तो अब इसी बात पर ये गाना एंजॉय कीजिए।

ओके जी, और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, जैसे कि राहुल इनपासी जी, जितेंद्र जी, किशन पाल जी, बाबूलाल जी, प्रमोद कुमार जी और अकुंता बेन जी, नंदनी माँ जी। लेकिन हमारे यानी कि प्रमोद जी लिखते हैं कि गूंजती है जब इनकी लड़कियां उस आंगन में जहाँ बीता था इनका भी हमारा सुनहरा बचपन भी। बिल्कुल भाई, ऐसा होता भी है। लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, ये डिमांड आई हुई है हमारे अभिषेक तिवारी जी का, और सुनते हैं, एंजॉय कीजिए। ये भी भोजपुरी गाना है लेकिन कुछ फनी सॉन्ग है।

देवरे खिला लिया क्या करे बा। और रविंदर गोरखपुरी जी, राहुल पासी जी, कपूर चंद जी, जितेंद्र सिंह जी, सभी ने गाने को बेहद पसंद किया है। और उसकी बात अगला गाना प्ले करता हूँ रविंदर गोरखपुरी जी का बिन तेरे सनम, एंजॉय कीजिए रविंदर गोरखपुरी जी।

एक सवाल मैं पूछूंगा और उसका जवाब देना होगा रेडियो हॉट स्टार के जो व्हाट्सएप नंबर है 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे देना होगा।

वेलकम बैक। और मैं बता दूं क्या, यानी कि कपूर चंद जी, कुंता बेनर्जी और जितेंद्र सिंह जी, राहुल पासी जी, नाहिद अंसारी जी और रविंद्र गोलखपुरी जी, सभी ने गाने पर फीडबैक दिया, गाने को पसंद किया है। थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सब मैसेज कर रहे हैं, लगातार मैसेज करते रहिए, क्योंकि आपका मैसेज आपको विनर बना सकता है। बिल्कुल नो टेंशन वाली बात है इसमें। और अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ जिसका डिमांड किया है हमारे विष्णु चंद्र जी ने। तो विष्णु चंद्र जी, गाना प्ले कर दिया आपका मैंने। इंजॉय द ट्रैक। सौदागर सौदागर।

और न ही जी लिखती है कि मेरी सांसों में खुशबू सिर्फ तुम्हारी है, मेरी सांसों में खुशबू सिर्फ तुम्हारी है, इस दिल को हर लम्हा चाहत तुम्हारी है, और बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम इस कदर, क्योंकि जिंदगी से ज्यादा हमें जरूरत तुम्हारी है।

वेलकम बैक। और बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया है, जैसे कि मैं नाम बताना चाहूंगा, और इन सभी दोस्तों ने गाने को पसंद करके अपना अपना फीडबैक दिया है। सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा और नाम बताना चाहूंगा, वो है दत्ता करम जी, अनिल कश्यप जी ये जुड़ चुके हैं, ये छोटपुर सिवान से। अच्छा तो भाई आप तो मेरे ही यानी कि जिले से हैं, बहुत बहुत वेलकम है अनिल कश्यप जी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये है हमारे ये राधा कृष्ण गोप जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, राहुल पासी जी हैं, प्रमोद कुमार जी हैं, एंड यहाँ किशन पाल शाक्य जी हैं, एमडी सुहेल जी हैं, गजानन सुलकार जी हैं, कपूर चंद जी, सभी दोस्तों ने गाने को पसंद किया है और अपना कीमती फीडबैक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। इसी बात में अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो आरजे सोनी जी का है। आरजे सोनी जी ने बहुत ही प्यारा गाना लाया है, तो आरजे सोनी जी एंजॉय कीजिए अपने इस प्यारे से ट्रैक को।

जी, और अब आपको सवाल बताना है कि एक गाना था सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, इस गाने की फरमाइश हमारे किस दोस्त ने किया था? इसका जवाब मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9135841232 पे भेज दीजिए प्लीज।

जी बिल्कुल, जो दिल ने कह दिया है वो मैंने सुन लिया है, थैंक यू सो मच। और इतना प्यारा गाना सुनाया दिल खुश करने के लिए, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी। और बहुत से दोस्तों का फीडबैक भी आया हुआ है, गाने को पसंद किया है, जैसे गजाना सलोकार जी, जितेंद्र सिंह जी, दत्ता करम जी, राहुल पासी जी और नंदलाल यादव जी, हमारी नंदनी माँ जी, थैंक यू सो मच। और आपके प्यारे प्यारे फीडबैक लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगला गाना मैं सुनवाने वाला हूँ अजय भगत जी का। अजय भगत जी ने अपना गाना सभी दोस्तों को डेडिकेट किया हुआ है। अजय भगत जी सुनवा दिया, इस पसंद को एंजॉय कीजिए। और सवाल का जवाब मेरे पास आ चुका है, सबसे पहले जवाब मेरे पास पहुंचा हुआ है नाहिद अंसारी जी, अमीना खान जी, गजानन जी, जितेंद्र जी, फुलेबाग संजीव भाव जी और कपूर चंद जी, और भी बहुत से दोस्त हैं।

0: बिल्कुल पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जाओ, तुम मुझे इतना प्यार करो सच में कि मैं दीवाना बन जाऊं। और सच में वैसे तो दीवाना बना ही दिया है कि नहीं। वैसे मेरे पास बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं और बता दूं कि फीडबैक में और फीडबैक देने वाले दोस्तों का नाम है वो मैं नाम बता रहा हूँ। और ये समझिए कि सभी दोस्तों ने गाने को पसंद किया है और सभी ने अपना अपना कीमती फीडबैक उन्हें दिया हुआ है। जैसे कि सर्वेज भगत जी का एक बार सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: आरजे अमन सर जी,
0: जी जी
1: अजय भगत जी और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: जी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप अपना फीडबैक देते रहिए, अगर कभी कभी बीच बीच में मैं शामिल कर भी लिया करूंगा, नो प्रॉब्लम। अजय भगत जी हैं, मनीषा शर्मा जी हैं और प्रमोद कुमार जी हैं, गजानन सलोकार जी हैं और हमारे दत्ता करम जी हैं, बाबूलाल अंजाना जी हैं, नाहिद अंसारी जी हैं और कुंता बेनी जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, राहुल पासी जी हैं और ये प्रमोद जी कहते हैं कि तेरी चाहत में दिल दीवाना हो गया। लिखते हैं कि तेरी चाहत में दिल दीवाना हो गया, हर लम्हा तेरे पास आने का बेताब हो गया और खो गए हम तेरी हसीन आंखों में, खो गए हम तेरी इन हसीन आंखों में कि अब ये तो यानी कि प्यार सिर्फ तुमसे ही हो गया। जी जी जी बिल्कुल, यानी प्यार तो हो गया है और प्यार तो प्यार होता है और प्यार तो यानी कभी भी किसी से भी हो सकता है कि नहीं। और प्यार की कोई उम्र, कोई जाति, कुछ कोई धर्म नहीं होती। नो कॉल प्लीज, मुझे कॉल ना करें दत्तक। अच्छा ओके जी, अगला गाना मैं सुनवाने वाला हूँ जिसे लेके आए हुए हमारे शाहिद अंसारी जी। और शाहिद अंसारी जी गाना ये मुझे बहुत पसंद है, इंजॉय कीजिए शाहिद अंसारी जी।

अनिल यानी के कश्यप जी लिखते हैं कि सुनामी आ जाए, आ गया तो पत्थर गुम हो जाएगा, इसलिए तो दिल पे कहानी लिखेंगे। अच्छा ये बात है, वही तो सोचो कि भाई क्या बात है कि पत्थर पर क्यों लिखेंगे। ओके बताना चाहूंगा कि देवराज जी जुड़ चुके हैं, राधे राधे कह रहे हैं सभी दोस्तों को, राधे राधे जी एंड कुंता बेन जी और प्रमोद कुमार जी, गजेंद्र सरकार जी, जितेंद्र जी, राहुल पासी जी और किशन पाल जी, सभी दोस्तों ने गाने को पसंद किया है और अपना कीमती कीमती फीडबैक दिया है, सभी को थैंक यू सो मच। और इसी तरह अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ और ये गाना सर्वजीत सेठी जी का है, वो तारीफ करना चाहते हैं अपनी उनकी।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं और वो मैसेज में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार जी है, कुंता बेनर्जी है, जितेंद्र सिंह जी है, देवराज जी है, एंड कपूर चंद जी है, नाहिद अंसारी जी है, गजानन सरोकार जी है, राहुल पासी जी है और सरोजी शेट्टी जी है, और साथ ही साथ ये नितिन सक्सेना जी, किशन पासा जी, सभी दोस्तों ने अपना प्रतिक्रिया दिया, अपना फीडबैक दिया है और सभी ने गाने को बेहद पसंद किया है। एंड मीना जी भी, जी जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और तो फिलहाल अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो काजल झक्का जी का गाना है जो मुझे बेहद पसंद है और ये मेरा फेवरेट गानों में से एक है। और तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

सच में कि चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार ले गई। आय है क्या गाना है। सच में इस गाने को सुनने के बाद दम दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। वैसे मैं बता दूं, बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया हुआ है, बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया है, और जिसमें से है मीना इब्राहिम जी एंड गजानन सुलकार जी, देवराज कुमार जी, जितेंद्र सिंह जी, नाहिद अंसारी जी एंड कुंता बेनी जी, सभी दोस्तों ने काजल झका जी के इस गाने को बहुत ही पसंद किया है और बहुत ही प्यारा प्यारा सभी ने फीडबैक दिया है। सभी का थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे गाने के लिए फीडबैक देने के लिए। लेकिन अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ, वो गाना तो मैं प्ले करने वाला हूँ, बता दूं किनका, ये जो आज की विनर बनी हुई है, और विनर बनी है नाहिद अंसारी जी। तो नाहिद अंसारी जी, गाना आपका मैंने प्ले कर दिया, इंजॉय कीजिए।

और हमारे यानी प्रमोद जी लिखते हैं कि चांद भी शर्मा जाए ऐसा नूर है और खुदा की बनाई हुई ये कैसी कैसी ये तस्वीर है, छू कर गुजरती है हवा जब तेरे चेहरे से तो लगता है जैसे कोई मखमली वो खूबसूरत सा एहसास और नूर है आहे। एंड गजानंद जी लिखते हैं कि बहुत ही यानी कि प्यारी फरमाइश थी उदित नारायण की आवाज़ में और आज के जितने भी गाने हैं बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इस गाने को सुन सुन के। देवराज जी भी लिखते हैं कि वह क्या गाना है था, मज़ा आ रहा है सुन सुन के। और वैसे मैं बता दूं कि इसी तरह के बहुत सारे फीडबैक मेरे पास हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। जैसे कि राहुल जी हैं, हमारे फूलबाग संजू भाव जी हैं, लिखते हैं कि आज का तो कार्यक्रम एकदम ललन टाप हो रहा है। हाँ, इनका तो यही भाषा है, ललन टाप वाला है कि नहीं। और नाही जी लिखते हैं कि चेहरे पर मासूमियत और दिल में शरारत रखते हो, लिखते हैं कि चेहरे पर मासूमियत और दिल में शरारत रखते हो, बातों बातों में तुम भी क्या कयामत रखते हो, हम तो समझे थे कि तुम सीधे साधे हो लेकिन तुम तो छुपा रुस्तम हो। अय है क्या बात है जी। वैसे ओके जी, और भी दोस्तों की जैसे कि हमारे नितिन सक्सेना जी, कुंता बेनी जी, राधा कृष्ण गोप जी, अशोक पाल जी, मीना इब्राहिम जी और राधा कृष्ण गोप जी, अच्छा इनका तो फिर दोबारा नाम ले लिया मैंने, ये यानी कि कपूर चंद जी, बाबूलाल अंजाना जी, सभी दोस्तों ने अपना अपना फीडबैक दिया है, सभी को थैंक यू सो मच। अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ राजेश कुमार जी का है, धोखेबाज हो गया। इंजॉय कीजिए राजेश कुमार जी।

बिल्कुल, आज के दिन भोजपुरी गाना भी बजता है अनिल जी, ऐसा न सोचिए। और यहाँ पे ना ही जी लिखते हैं कि धूप हो या छांव, हर सफर में तुम्हारा साथ चलूंगा और तुम्हारी आंखों की नमी को अपनी मुस्कुराहट में बदलूंगा। लोग छोड़ देते हैं बीच राह में अक्सर दामन, पर वो आखिरी सांस है कि मैं तुम्हारी आखिरी सांस तक साथ न छोड़ूंगा। वाह क्या बात है। वैसे यानी कि यहाँ पे बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है, जैसे कि प्रमोद कुमार जी हैं और राधा कृष्ण गोप जी हैं, नितिन सक्सेना जी हैं और राहुल पासी जी हैं, जितेंद्र जी हैं, सभी दोस्तों ने गाने को बहुत पसंद किया है और फीडबैक दिया है, अपना कीमती फीडबैक। मतलब सभी को गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, सभी को गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। मैंने सभी का नाम ले लिया एक ही बार में, क्योंकि बार बार मुझे वो कहना पड़ता था ना कि इनका गाना अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, इनका गाना अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एक ही बात को बार बार बोलते बोलते क्या आप बोर नहीं होते थे? मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे, क्यों है ना। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये नया तरीका अपनाया हुआ है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा गाने भी शामिल हो, फीडबैक भी मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं ले रहा हूँ, आपका नाम शामिल हो रहा है, समझिए कि आपका फीडबैक शामिल हो गया। वैसे अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ अमीना खान जी का, इंजॉय कीजिए अमीना जी।

वेलकम बैक। और अमीना खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया दिल से है। एंड जितने भी दोस्तों ने फीडबैक दिया है तो उनका भी नाम बता देता हूँ कि किन किन दोस्तों ने फीडबैक आपके लिए दिया है। वह है जितेंद्र सिंह जी हैं, कुंता बेनी जी दिल्ली से हैं, गजानन सलोकार जी हैं एंड राहुल पासी जी हैं। जितने दोस्तों ने आपके गाने को फीडबैक दिया और पसंद किया है, सभी के लिए थैंक यू सो मच। और अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो सुनीता गोप जी का है, और सुनीता गोप जी सुनवाना चाहती है भोजपुरी गाना। सुनवा दिया सुनीता।

और बता दूं कि मेरे पास जो फीडबैक आए हुए हैं वो हमारे फूले भक्त संजीव भाव जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, अनिल यानी के कश्यप जी का, राहुल पासी जी का एंड प्रमोद कुमार जी का और किशन परसाके जी का, सभी ने गाने को बेहद पसंद किया है और सभी ने अपना अपना फीडबैक दिया है। इन सभी को गाना बहुत अच्छा लगा है। सभी को थैंक यू सो मच अपना फीडबैक देने के लिए। और मुबारक हुसैन जी, इसी बात पर मुझे एक और गाना यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि कविता कुमारी जी का, उन्होंने कहा है कि ये तोहसे मिलल जी अच्छी गाना सुनना चाहती है। सुनवा दे कविता कुमारी जी।

बिल्कुल तोह से मिलल जंखिया तो बुझनी की प्यार कहा और बहुत से दोस्तों का फीडबैक मेरे पास आया हुआ है। उनमें से मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे फुलबाग संजू भाव जी का और मुबारक हुसैन जी का, सुनीता गोप जी का एंड मीना इब्राहिम जी का, नितिन सक्सेना जी का, राहुल पासी जी का, जितेंद्र सिंह जी का, अशोक इंफाल जी का और रविंदर गोरखपुरी जी का। सभी दोस्तों ने गाने को बेहद पसंद किया और अपना प्यारा प्यारा फीडबैक दिया है। सभी को थैंक यू सो मच। और अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे दत्ताक्रम जी का है। दत्ताक्रम जी, गाना प्ले कर दिया आपका, एंजॉय कीजिए।

और मनीषा शर्मा जी आपने कहा है कि पन्ना की तमन्ना हो के हीरा मुझे मिल जाए, वो गाना सुनना चाहती हैं तो लेकिन उसका लिंक मुझे अगर भेजती है क्योंकि आपने कहा है कि वो न्यू वर्जन है। वैसे मैंने आपको गाना भेजा है, एक बार चेक कर लीजिए अपना व्हाट्सएप पर।

वेलकम बैक। और बहुत से दोस्तों ने गाने को पसंद किया, उसमें नाम है नितिन सक्सेना जी, दत्ता करम जी, रविंदर गोरखपुरी जी, जितेंद्र सिंह जी, एंड कुंता बेन जी, राहुल पासी जी, राधा कृष्णा गोप जी, और प्रमोद कुमार जी, फुलबाग संजीव भाव जी, सभी सभी सभी दोस्तों का थैंक यू सो मच। एंड अब अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि प्रमोद कुमार जी का आगरा वाले जी, तो सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल आंखों में सो जाऊं, बहुत ही प्यारा ये नगमा था और मजा आ गया सुन के, और ये फीडबैक तो जरूर शामिल करूंगा क्योंकि वर्ड फीडबैक है।
1: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरोजी सेठी फाजिलका पंजाब से,
0: धन्यवाद जी। और उनके बाद से मैं बता दूं कि मेरे लिए यहाँ फीडबैक आया हुआ है हमारे नंदनी माँ जी का, अमीना इब्राहिम जी का, नितिन सक्सेना जी का और राहुल इन पासी जी का, कुंता बेनी जी का, अमीना खान जी का। ये लिखती हैं कि उस बेवफा की याद में जाम उठा लिया। अच्छा, उस बेवफा की याद में जाम उठा लिया और फटाफट लगाया ब्रेड पर, अच्छा यानी जैम, अच्छा जैम जैम जैम उठा लिया और फटाफट लगाया ब्रेड पर और खा लिया। मुझे लगा कि जैम वो जाम, ओके कोई बात नहीं, आपने जैम कहा, मुझे समझने में गलती हो गई है, नो प्रॉब्लम, होता है होता है। एंड मैं बता दूं कि और भी दोस्तों का फीडबैक है, जैसे कि जितेंद्र सिंह जी हैं और प्रमोद कुमार जी हैं और दत्ता करम जी हैं और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि रविंद्र गोरखपुरी, मतलब सभी दोस्तों ने फीडबैक दिया है। नाहिद जी लिखते हैं कि तुम्हारी आंखों के दरिया में उतरने को जी चाहता है। अच्छा, तुम्हारी आंखों के दरिया में उतरने को दिल चाहता है और इस दुनिया की हर बंदिश से मुकर जाने को दिल चाहता है और समेट लो मुझे अपनी अपनी पनाहों में इस तरह आज की इन आंखों में सोकर उम्र बिताने को जी चाहता है। जी जी बिताते रहिए बिताते रहिए। वैसे यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया और दोस्तों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने फीडबैक दिया है। बिल्कुल, वैसे अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ और ये गाना किनका है मैं देखना चाहूंगा। ये भेजा हुआ है हमारी मनीषा शर्मा जी ने, तो मनीषा शर्मा जी गाना प्ले कर रहा हूँ आपका, इंजॉय कीजिए पन्ना की तमन्ना। और मैं बताना चाहूंगा कि 10 बजे मैं प्रोग्राम एनी हाउ खत्म करने वाला हूँ, बहुत दोस्तों की फरमाइशें छूटने वाली है, उसके लिए आई एम सॉरी, थैंक।

और अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास बता दूं कि ये नितिन सक्सेना जी और मनीषा जी तो थैंक यू बोल ही रही हैं। नाही जी लिखती हैं कि हीरे की चमक भी फीकी सी लगती है जब तुम्हारी मुस्कुराहट सामने हंसती है, और किस्मत की लकीरों में बस यही दुआ है मेरी कि मेरी जिंदगी में हर लम्हा तुम्हारी चाहत बनी रहे। आए है, है, क्या बात है। अगली पसंद मैं सुनाना चाहूंगा अशोक नेपाल जी का, कि जाने जा कह के बुलाया तो

बिल्कुल बुरा मान गए और मेरे पास फीडबैक भी बहुत सारे आ गए हैं। मीना इब्राहिम जी की, कुंता बेनी जी की, राहुल पासी जी की, नितिन सक्सेना जी की, मनीषा शर्मा जी की एंड हमारे यानी कि किशन पाल साक्य जी की और सभी का फीडबैक है। और अशोक पाल लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। ओके जी, और मैं बता दूँ अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ अनिल यानी के कश्यप जी का। अनिल कश्यप जी, घुंघरू बांध दिए हैं आप, इंजॉय कीजिए।

और यहाँ पे मीना ये मतलब अमीना खान जी का एक बहुत ही यानी फनी शायरी आया हुआ है, लिखते हैं कि बड़ी जालिम है तेरी गली के बच्चे, ये फर्ज यानी कि कुत्ता पीछे करके और कहते हैं कि प्यार किया था।

आप फोन ना करें प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूँ जो भी आपको भेजना है सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजिए या रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से मैसेज कीजिएगा, तभी मैं आपका मैसेज या कोई भी शामिल कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं नहीं शामिल कर पाऊंगा, इसके लिए आई एम सॉरी। आप यानी व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, इसके लिए आई एम सॉरी। ओके, अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे कुंता बेनर्जी का अमर अकबर एंथोनी का टाइटल ट्रैक।

और बता दूं कि आज के यानी कि सॉन्ग मतलब इन सॉन्ग कर रहे हैं आज के जो टॉप यानी के लिसनर हैं उसमें इन विनर हुए हैं नितिन सक्सेना जी। तो नितिन सक्सेना जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। जो भी गाना सुनना चाहते हैं लिख कर भेज दीजिए ताकि मैं आपके गाने को प्ले कर

और बिल्कुल मैं चलाया तेरी ओर। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, जैसे कि यानी कि कपूर चंद जी का, कुंता बेनी जी का, राहुल पासी जी का, एंड ये नितिन सक्सेना जी का, राहुल और क्या नाम है यानी कि प्रमोद कुमार जी का, मीना जी का, किशन पासाके जी का, गजानंद जी का, सभी का। तो थैंक यू सो मच, सभी दोस्तों ने इतने प्यारे प्यारे फीडबैक दिए हैं, सभी ने गाने को पसंद किया है और सभी ने धन्यवाद दिया। अगला गाना मैं प्ले करूँ, जो आज के लीडर बोर्ड के विनर है नितिन सक्सेना जी, उनका गाना प्ले कर रहा हूँ। आवाज तो हमको, हम खो गए।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं जिसमें से शामिल है, मैं बता दूं कि रीतिन सक्सेना जी, गजानन जी, मीना जी, अमीना खान जी और राहुल पासी जी, सभी को गाना बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी।

जी मुझे तुम बहुत याद आते हो, और एक गाना मुझे दिख रहा है अभी मेरे सॉन्ग रिक्वेस्ट में, राधे जी का दिल डिंग डोंग डिंग डोले, ओ माय गॉड, ये गाना आए और मैं प्ले नहीं करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए राधे जी।

वेलकम बैक। और मेरे पास अब मैं आखिरी गाना ही प्ले करने वाला हूँ, बहुत से दोस्तों की फरमाइशें छूटने वाली, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि सभी दोस्तों गाने क्यों शामिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और मुझे अभी जाना भी है क्योंकि लेकिन मैं बता दूं कि अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो भी बहुत ही प्यारा गाना है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत से दोस्तों के फीडबैक भी है, वो है यानी कि कल्पना सक्सेना जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, और ये है अंजनी कुमार जी हैं, और मीना इब्राहिम जी हैं, गजानन सलोकार जी हैं, कुंता बेनी जी हैं, राहुल पासी जी हैं, सर्वजीत सेठी जी हैं, सभी को थैंक यू सो मच। और अगला गाना मैं आखिरी गाना प्ले करने वाला हूँ जिसे लेके आए हैं अनिल मेहता जी। अनिल मेहता जी गाना प्ले कर दिया आपका, ये इंजॉय कीजिए।

और मुझे इसी गाने के साथ अब दीजिए यहाँ से प्रोग्राम से निकलने की इजाजत, और खुश रहें, स्वस्थ रहें, और जब भी टाइम मिले सुनते रहें रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे, और तब तक मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। और हाँ, मैं थीम बता दूं, यानी थीम के शब्द हैं, वो है बरसात, बारिश, बरखा, पवन, हवा, घटा, रिमझिम और बिजली, इन शब्दों पर कल गाने की बरसात होगी, है ना। बाय बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

जान, हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: अरे सूरदास का औलाद, तो अगर सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहते हम कहा ठहरा करने को कहा गया गया।
1: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाई देखो ये कालिया गैंडा के राजा की तरह रहेंगे, यानी अब हम तो हर प्रजा की तरह रहिए।
2: गोविंदा,
0: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
2: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
0: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
2: गोविंदा,
0: और हम तो के हुकुम देते हैं ई दारू का अड्डा बंद कर दे।
2: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा
0: बंद करो। बंद, हम कह दिया सो कह दिया। अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
2: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहते हैं? अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
4: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
5: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
4: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.